आचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।

रमिततनु श्रीमाया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब।

भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज के संत।

श्री मद्भगवद गीता वह दिव्य एवं पावन संदेश है जो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव प्रजाति को दिया है। परम प्रभु स्वयं कहते हैं कि गीता उत्तम सार है मेरा, मेरा श्रेष्ठ निधान है। गीता ही अति उग्र मेरा और अविनाशी ज्ञान है। गीता मेरा परम रहस्य है, मेरा गुरु महान है। परम पद ये पार्थ मेरा, मेरा हृदय है, प्राण है। इस पवित्र शास्त्र के रचनाकार गुरुवर व्यास देव के शब्दों में गीता सुगीता कर्तव्य के मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मना भष्य मुख पद्मा द्विनिश्रता, अर्थात कर्तव्य हो गीता सुवाचन अनर्थ शास्त्र विस्तार है। पद्मनाभ के मुख कमल से उदित ये उद्गार है। आइए इस दिव्य संदेश के उद्घोषक भगवान श्री कृष्ण की अनुपम छवि को अपने मन मंदिर में सजोएं।

गीता न तो महज दार्शनिक एवं विद्व चर्चा का विषय है और न ही मात्र जीवन निवृत्ति अथवा मोक्ष का उत्तम साधन, अपितु यह एक सुखमय जीवन जीने की अद्भुत कला है। इट हैज बीन राइटली सेड दैट गीता इज नॉट अ रिटायरमेंट प्लान बट इट इज द एसेंशियल डायनामिक्स ऑफ द लाइफ। द डीप रूटेड फिलोसफी इन ईच वर्ड ऑफ दिस ग्रेट स्क्रिप्चर गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ रेयर डिवाइन नॉलेज एंड विजडम रिक्वायर्ड फॉर हैप्पी prosperous and contented life. In spite of repeated readings and analysis, Gita always remains eternally fresh and educative. आधुनिक युग के महर्षियों ने, आचार्यों ने, कर्मयोगियों ने, क्रांतिकारियों ने, समाजशास्त्रियों ने, चिकित्सकों ने व वैज्ञानिकों ने इसे अपनाया है। संत ज्ञानेश्वर, आदि शंकराचार्य, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा, लोकमान्य तिलक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी प्रभुपाद एवं स्वामी राम सुखदास जैसे महान व्यक्तियों ने इस संदेश को न केवल अपनी जीवन शैली बनाया अपितु उत्कृष्ट शब्दों में अपने उद्गार भी जग जाहिर किए। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब मैं निराशाओं से घिरा होता हूँ तो मैं गीता को उलटता पलटता हूँ और मुझे धैर्य दिलाने वाला कोई न कोई श्लोक अवश्य मिल जाता है। आचार्य विनोबा लिखते हैं,

अर्थात मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे अधिक मेरी बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ है। महामना पंडित मालवीय के विचार हैं कि इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतने सारे उच्च गंभीर तथा सात्विक विचार भरे हैं कि वे एक साधारण मनुष्य को भी निम्न से निम्न दशा से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। आइए इस पवित्र पावन संदेश का सरल भाषा में सरस संगीत के माध्यम से पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करें। यह सकल शास्त्रों की स्वामिनी है, समस्त श्रुतियों की रानी है, वह स्वयं श्री हरि मुख से निकली मधुर वाणी है।

एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय एक अर्जुन विषाद योग। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन हैं। उनके अनुचर संजय को गुरुवर व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त है। धृतराष्ट्र संजय से दूर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध के लिए उत्सुक विशाल कौरव व पांडव सैन्य दलों का हाल पूछते हैं। संजय महान वीर व पराक्रमी योद्धाओं से युक्त दोनों सेनाओं की सैन्य व्यवस्था के बारे में बतलाते हैं।

सेना के प्रधान पितामह भीष्म अपने शंख से सिंहनाद सी गर्जना करते हैं। प्रत्युत्तर में पांडव सेना के सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। ऋषिकेश के पंचजन्य एवं धनंजय के देवदत्त शंख की अत्यंत दिव्य तथा गगनभेदी ध्वनि से वातावरण में कोलाहल हो उठता है।

हे राजन, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण उसके रथ को बीच सेनाओं के खड़ा करते हैं। अर्जुन शत्रु पक्ष में अपने सभी स्वजनों, प्रियजनों एवं आचार्यों को देखकर ऋषिकेश से कहता है,

व्याकुल मोहग्रस्त अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष राज्य भोग के लिए स्वजन व गुरुवध को पाप योग्य एवं असंगत कार्य बतलाते हुए विभिन्न तर्कों के साथ युद्ध न करने का निर्णय लेता है। वह धनुष बाण एक ओर रखकर अपने रथासन पर बैठ जाता है।

ताम्रपर्णी और युग युग तक बहती रहेगी। ये ताम्रपर्णी के बारे में लिखा गया साहित्य भले ही मर जाए, ताम्रपर्णी बहती रहेगी, बहती रहेगी ताम्रपर्णी।

चांदकर्णी की यश गाथा गाते हुए कवि कुमरा गुरुपरर जैसे सरिता के रूप गुण पर विमोहित हो उठते हैं, तभी तो ताम्रपर्णी की जलधारा की विशेषताओं का गौरव गान करते हुए वे पौराणिक गाथाओं की ओर भी संकेत करते हैं। वास्तव में तमिल साहित्य संस्कृति में ताम्रपर्णी का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकवि भारती, कुमरा गुरुपर स्वामीगल, मुत्तुपाटन और महाकवि कंबन जैसे तमिल के ख्यात कवियों ने ताम्रपर्णी की यशगाथा को अपने काव्य में व्यक्त किया है।

0: संस्कृति में नदियों को बहुत महत्व मिला है, क्योंकि सभ्यता के विकास में इनका अन्यतम स्थान रहा है। इसीलिए अधिकांश नदियों की महिमा मंडित कथाएं पुराणों में मिल जाती हैं। गंगा यमुना, कृष्णा कावेरी, नर्मदा गोदावरी और ब्रह्मपुत्र सोन आदि नदियों की तरह भारतीय प्रायद्वीप की सुदूर दक्षिण की नदी ताम्रपर्णी के उद्भव की गाथा भी पुराणों में उपलब्ध है।
1: कथा है शिव विवाह का समारोह संपन्न।

0: हमारे विवाह को कोडिगाइड गिरी से ही देख सकेंगे। ऐसा वरदान पाकर अगस्त्य ऋषि कमंडल उठाकर दक्षिण की ओर चले गए।
1: फिर क्या हुआ?
0: दक्षिण क्षेत्र में पहुंचकर कमंडल रखकर थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके। सहसा कहीं से उड़ता हुआ एक कौआ आया। उसके बैठते ही कमंडल लुढ़क गया और उसका आधा जल बाहर आ गिरा। ये धारा बनकर आगे प्रवाहित हो गया। कहते हैं कि उसी पवित्र प्रवाह से दक्षिण की गंगा कावेरी का उद्भव हुआ था।
2: लेकिन आप तो ताम्रपर्णी के उद्भव की कथा सुना रहे थे।
0: हाँ भाई, अब आगे की कथा सुनो, तभी पूरी बात समझ में आएगी ना। अपने कमंडल में बचा हुआ जल लेकर अगस्त्य मुनि कोडिगाइगिरी पहुंचे। वरदान के अनुसार वहां पर वर वधु के रूप में उन्हें शिव पार्वती के दर्शन प्राप्त हुए। शिव जी के आदेश से अगस्त्य ऋषि ने कमंडलू का शेष जल प्रवाहित कर दिया।

0: नदी ही ताम्रपर्णी के रूप में युग युगों से बहती चली आ रही है। कहते हैं जिस प्रदेश से कोरणी नदी बहती है तभी उसी क्षेत्र को कोरणी नाग कहा करते थे। लगभग 7,000 वर्ग मील में फैले क्षेत्र को कोरणी स्थल कहा गया है। ये लगभग त्रिकोण आकार का है।
1: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला और केरल के दक्षिणी भाग में स्थित है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में ही है एक पोदिगई पहाड़।
0: ताम्रपर्णी का उद्भव इसी पोदिगई गिरी से हुआ है। पोदिगई से 1837 मीटर ऊंची अगस्तियर गिरी के शिखर दिखाई पड़ते हैं। इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। वास्तव में तानपूर्णय यानी ताम्रपर्णी अगस्तियर पहाड़ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। सितंबर नार जिला बनने से पहले ताम्रपर्णी एक ही जिले में बहकर सागर में मिल जाती थी।
1: वास्तव में पोदिगई पहाड़ में पूर्णय नदी की जलधारा दो भागों में बट जाती है। एक का नाम अन्नपूर्णय यानी पुरुष पूर्णय और दूसरे का नाम तन्नपूर्णय यानी नारी पूर्णय है। अन्नपूर्णय केरल से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है और तन्नपूर्णय बंगाल की खाड़ी तक पहुँच कर सागर जल में विलीन हो जाती है। मूलतः तमिल भाषा का तन्नपूर्णय शब्द ही कालक्रम में बदलकर ताम्र

पठारी भाग में बहने वाली सरिता ताम्रपर्णी के नाम के बारे में एक और प्रसिद्धि है। इस नदी के उद्भव स्थल पर चंदन के वृक्षों के झुरमुट हैं। इनके पत्ते नदी जल में गिरते हैं, जिनका रंग ताम्रय यानी कमल के फूल की तरह हो जाता है। इसीलिए इस सरिता को ताम्रपर्णी कहते हैं। कुछ विद्वानों का विचार अलग है। उनके अनुसार ताम्रपर्णी नदी की रेत में तांबे के कण पाए जाते हैं, फलस्वरूप तांबा या ताम्रयुक्त होने के कारण इसका नाम ताम्रवर्णी या

0: पढ़ने की मुख्य धारा में आकर मिलती हैं।
1: वेग रति होती हुई ताम्रपर्णी नदी की धारा उछलती कूदती आगे बढ़ जाती है वानतीर्थम पहुंचने के लिए।
2: ये वानतीर्थम क्या है और कहां पर स्थित है?
1: पर्वत मालाओं से उतरकर ताम्रपर्णी की धारा पठारी भाग में बहती हुई विशाल जलप्रपात बनाती है, उसी को वानतीर्थम कहते हैं।
0: ताम्रपर्णी की जलधारा वानतीर्थम में लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। चट्टानों पर गिरते ही इसकी जल राशि छिन्न भिन्न होकर फैल जाती है, फैलिल जल और उस पर फुहारों से बना कोहरा। लगता है जैसे निरभ्य आकाश से बादलों सहित झुक आया हो। यही स्थल है वानतीर्थम, अर्थात जिस तीर्थ पर आकाश उतर आया हो।

क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में आने पर इसकी धारा की तीव्रता समय समय कम होने लगती है। अब दोनों ओर से दो अल्हर सहेलियों की भांति दो सहायिकाएं पेयारू और पुस्तारू

0: वाराणसी जलप्रपात के पास में तट पर देवी का मंदिर है, जहां भक्तगण पूजा आरती के लिए एकत्र होते हैं। यहां अमावस्या की संध्या को पूजा का विशेष महत्व है।
1: और सुना है कि ताम्रपर्णी नदी पर वानतीर्थम से आगे सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल नीलकंठन का संधि है, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम कहा जाता है। हाँ, नीलकंठन कसम केवल पर्यटन स्थल ही नहीं, ताम्रपर्णी नदी के पास बने सरोवर के साथ ये एक ऐतिहासिक स्थान भी है।
0: ऐसी कथा है कि जहाँ पर ताम्रपर्णी से उसकी सहायता ताराय नदी मिलती है, वहाँ पर पांड्य राजाओं का बनाया हुआ एक छोटा सा दुर्ग था। जब दक्षिण में नवाबों के साथ युद्ध होता था तो पांड्य राजा इसी किले में शरण लेते थे।
1: इस किले के बारे में रोचक जानकारी इस

0: नीलकंठन कसन के निकट पांडव राजाओं का किला था। किले के आगे की ओर विशाल दरवाजा था। ऐसी प्रथा थी कि जब कोई शत्रु आता हुआ दिखाई पड़ता था तो द्वार पर तैनात सिपाही ढोल बजाकर संकेत देता हुआ सावधान किया करता था। एक बार ऐसी घटना हुई कि शत्रु आ गया और शत्रु दल किले में प्रवेश कर गया और अभिमानी पांडे राजा को पराजय स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने अपना सर काट कर नदी जल में फेंक दिया। इस स्थान को नीलकंठन कसम कहा जाता है। यहाँ पर राजा का सिर यानी मुंडन गिरा, उस स्थल को मुंडन तुरई नाम दिया गया।
1: नालालंबर मंगला के मेले और आर्च बोर्ड में कटिर पांचन का मार्ग है। आगे ले रहा तो अंदर कोटे की वासल अंदर आ रहा। अंदर ऐड दे ले रहा हूँ ये भी वंदा कोटे आ रहा।
2: मुंडन तुरई इसी नाम से तमिलनाडु में एक मुख्य टाइगर रिजर्व यानी शेरों का अभयारण्य भी है। ये ताम्रपर्णी नदी की घाटी में फैला हुआ है। मुंडन तुरई अभयारण्य की जानकारी दे रहे हैं भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री भगवान सिंह।
3: द कलर कार्ड मुंडन तुरई टाइगर रिजर्व कंप्राइजेज ऑफ 817 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट इन द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट।
0: 1988 में भारत सरकार ने कलकार मुंडन तुरई को
4: शेरों का शरणालय बनाया। आज से 17 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला घना जंगल पश्चिमी घाट के दक्षिण हिस्से का ही सिलसिला है। वहाँ सिर्फ शेर नहीं पाए जाते बल्कि बारह सिंघा, हिरण, चीता, नीलगाय और अनेक जानवर पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार किस्म के वृक्ष, जलाशय और पहाड़ी ढाल सुंदर नैसर्गिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ अभयारण्य नहीं है, एक अच्छा पर्यटन स्थल भी बन गया है जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आया करते हैं। अभयारण्य के वृक्षों की रक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

0: प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हर तरह की कोशिश की जाती है।
1: मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई पीक फॉरेस्ट, टू थॉर्न फॉरेस्ट।
2: भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग में स्थित इस सदा नीरा ताम्रपर्णी का क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि कार्य के लिए सिंचाई जल के अलावा ताम्रपर्णी से यथेष्ट मात्रा में जल विद्युत प्राप्त होने लगी है, जिससे उद्योग केंद्रों का विकास हुआ और तिरुनेलवेली जिले की कायापलट हो गई।
3: ताम्रपर्णी पर इस महत्वपूर्ण जल विद्युत योजना का नाम क्या है और उसका निर्माण कैसे हुआ?
2: पापनाशम, ये नाम है ताम्रपर्णी नदी के मुख्य जलप्रपात का, जहाँ पर ताम्रपर्णी की जलधारा पठारी भाग में घुमावदार रास्ता बनाकर चट्टानों से घिर कर बहती है। ताम्रपर्णी की जलधारा से पन बिजली प्राप्त करने के लिए हमारे इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया। नदी की वेगवान धारा को रोककर एक विशाल जलाशय बनाने के लिए इस स्थान पर दोनों ओर की पहाड़ियों के बीच ऊंचा बांध निर्मित किया गया। जलाशय के बन जाने से यहाँ के किसानों को 12 महीने खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा, साथ ही ताम्रपर्णी में आने वाली बाढ़ का भय भी समाप्त हो गया। जल विद्युत उत्पादन करने वाली दक्षिण की पुरानी पनबिजली योजना पापनाशम की जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी श्री आर वेल्लू।
4: ताम्रपर्णी आर्थिक कुरुके 1944 அந்த அணையின் முழுநீர் மட்டம் 143 அடியாகும். முழு கொள்ளளவு 1544
5: ताम्रपर्णी नदी की जलधारा पर पापनाशम के निकट विशाल बांध का निर्माण किया गया, जिसके जलाशय में 5,500 क्यूबिक फीट पानी रखने की क्षमता है। भरे होने पर इसकी गहराई 143 फीट की होती है। ताम्रपर्णी नदी पर दूसरा बांध भी यहीं खेसबलारू पर बनाया गया, जिसके जलाशय की क्षमता 1,225 क्यूबिक फीट और गहराई 143 फीट की है।
4: 11 कालवाय 8 अणे आंगन कटपे सुमार 73,000 एकर कार सागुबड़ी 86,000 एकर।
5: इन बांधों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य किसानों को ठीक समय पर सिंचाई के लिए पानी देना, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत का उत्पादन, और इस तरह महादेव शिव शंकर के वरदान के अनुसार ताम्रपर्णी पापनाशम तथा शेष बलारू के बांधों के द्वारा विकास कार्यों में योगदान देकर अपनी महिमा का लाभ बिखेर रही है।
4: தண்ணீரை ஒருமுகப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி விடுவதன் மூலம்
5: ஆகிய பகிர் பெயர் தாமிரபணி நதிக்கு சாகிக்கா மணிமுத்தாருக்கு ஜலதாரா ஆகிப்படாமல் 1958 ஒரு சோட்டா பாந்த் தயார்க்கியா கயா ஹை இஸ்ஸே 22,000 ஏக்கர் கி ரபி ஃபசல் வாலே கேதோ கே லியே சிஞ்சாய் ஜல் மில்தா ஹை
4: 2 மினிமம் ஒன்று சிறுவனார் அணியின் பக்கத்திலும்
5: ताम्रपर्णी की जलधारा से विद्युत उत्पादन के अलावा पेयजल और सिंचाई जल वितरण का प्रबंध किया गया है। अब सिंचाई विभाग ने सिंचाई जल प्रबंध के लिए तारीख भी निश्चित कर दी है। रबी की फसल के लिए जून की 1 तारीख और खरीफ के लिए 1 अक्टूबर को पानी छोड़ा जाता है।
2: वैज्ञानिकों तथा जल शास्त्रियों ने इसके जल के उपयोग का प्रयत्न जारी रखा है। अनेक छोटी बड़ी बहुउद्देशीय योजनाएं आरंभ की गईं। ये सुखद तथ्य है कि छोटी होती हुई भी ताम्रपर्णी दक्षिण भारत में पहली नदी है जिसके सर्वाधिक जल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि इस इलाके में खुशहाली आई है और विकास का लाभ किसानों तथा ग्रामवासियों को प्राप्त हो रहा है। धान उपजाने वाले इस कृषि प्रधान क्षेत्र में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। नदी ताम्रपर्णी के सहारे

0: विकास कार्यों की जानकारी अंबा समुद्रम केंद्र के प्रधान श्री डब्ल्यू विल्फ्रेड मैनुअल दे रहे हैं।
1: தாமிரபரணி பாசன பகுதியில் இரு போகங்களில் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. முதல் போகத்தில் மே ஜூன் முதல் செப்டம்பர் அக்டோபர் வரை
2: தாமிரபரணி நதி கா சிஞ்சாய் ஜல் கேத்தோ கே லியே உபலப்த ஹோனே லகா. இஸ் சுவிதா சே பூரா லாப் உடானே கே லியே யஹா கி முக்ய ஃபசல் தான் கி ஓர் தியான் தியா கயா. சால் மே மே தான் கி தோ ஃபசலே உகாயி ஜாதீ ஹை. பஹலி மே ஜூன் மே ததா தூஸ்ரி செப்டம்பர் அக்டோபர் மே. क्षेत्र में चावल के उत्पादन को बढ़ाने और इसकी खेती समस्याओं के निराकरण के लिए ताम्रपर्णी नदी के किनारे अंबा समुद्रम नामक स्थान पर सन 1937 में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। जहां विभिन्न प्रकार की फसलों कीटाणुनाशकों तथा खाद के बारे में तरह तरह के प्रयोग कर धान की अच्छी किस्म प्राप्त की जाती है जिससे चावल का उत्पादन बढ़ता रहे। अब तक इस अनुसंधान केंद्र से 18 प्रकार की नई किस्में प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें 1986 में विकसित अंबई 16 उत्तम कोटि की है जिसे बहुत कम समय में ही धान की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। उसी के द्वारा 1989-90 में चिदम्बर नार जिले के कृषि मेले में अधिक चावल उपजाकर कादर साहब नामक एक कृषक ने प्रथम पुरस्कार जीता था।

और नदी ताने तैने पूरी दक्षिण की दिशा में बहती चली जाती है, जहाँ इसकी प्रिय सहायिका सितार मिलती है। संस्कृत साहित्य में इसकी जल धारा को सौंदर्यमय मानकर चिन्ना के नाम से पुकारा गया है। हालांकि सितार नदी की कुल लंबाई केवल 62 किलोमीटर है, किंतु इस पर 18 छोटे छोटे बांध

0: ताम्रपर्णी और पुष्पारी के मध्य द्वाब में दूर दूर तक धान की हरी भरी फसलें लहलाती हैं। वेगवती नदी चित्तारू पठारी प्रदेश से होती हुई कुचालम नामक क्षेत्र में पहुंचकर ताम्रपर्णी के मिलन के पहले कई झरनों का निर्माण करती है। इस स्थल को कुचालम जलप्रपात के नाम से लोकप्रियता मिली है। मशहूर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कुचालम के बारे में वहां के प्रशासकीय अधिकारी गुरुस्वामी के शब्दों में
1: குற்றாலத்தின் பெருமையை சொல்லணும்னா அதுக்கு தமிழில் வார்த்தைகளே கிடையாதுங்க. அது குற்றாலத்தில் இருந்து ஆண்டு அனுபவிச்சுன்னு தான் தெரியும்.
2: அகர் குற்றாலம் கி விசேஷ்தா பதானி ஹோ உஸ் சப்தோ கி கமி ஹோ ஜாயேகி. किंतु यहाँ कुचालम आकर इन झरनों में नहाकर तथा प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बस कहना कठिन है, पर अनुभव किया जा सकता है। कुचालम में अनेक झरने हैं, गुलमते रूही सुख रूही तीन अरवी ऐंद अरवी मुख्य। कुचालम में एक बार आने से बार बार आने को मन करता है। यही कुचाल नागर मंदिर भक्तों का ऐसा विश्वास है कि इन झरनों में स्नान करके मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कारण पर्यटकों के अलावा यहाँ धार्मिक यात्रियों की भी भीड़ होती है और पूजा अर्चना के स्वर गूंजते रहते
1: हैं।
0: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ताम्रपर्णी का जल भी गंगा जल के समान पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला है, क्योंकि इसका आदि स्रोत शिव जी का कमंडल है। किंतु युगों युगों से बहती आ रही सरिता ताम्रपर्णी का जल मनुष्यों के द्वारा अवांछित उपयोग किए जाने के कारण अब दूषित होने लगा है। ताम्रपर्णी जल में बढ़ती हुई गंदगी से लोगों में चिंता होने लगी। इसके जल को दूषित होने से बचाने के लिए अनेक उपाय किए

0: बता रहे हैं, जिसकी जानकारी तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तिरुनेलवेली शाखा के इंजीनियर श्री के कार्तिकेयन दे रहे हैं।
1: சுமார் 120 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த தாமிரபரணி நதியில் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளிவரும் உற்பத்தி கழிவுநீரும் தொழிலாளர்களின் மூலமாக ஏற்படும்
2: தாமிரபரணி நதி கே ஜல் கே தூஷித் ஹோனே கே முக்கிய காரணோ மே இஸ்கே தட்டோ பர் ஸ்தாபித் கார்கானோ ஆர் மிலோ சே ஆனே வாலா கந்தா பானி ஹே। मजदूरों तथा आसपास बसे लोगों द्वारा भी नदी में गंदगी फैलाई जाती है। सुबंदरनार जिले में स्थित रासायनिक और अन्य छोटे कारखानों से भी गंदगी नदी में आती है। ताम्रपर्णी नदी में प्रदूषण कम करने के लिए इन कारखानों के अधिकारियों को समझाया जाता है कि जल शुद्ध करने वाले यंत्रों को ठीक रखें और नदी में गंदगी कम बहाएं। इनके अलावा आसपास के लोगों को जागरूक और सावधान किया जाता है। जनसंचार के साधनों द्वारा भी संदेश दिया जाता है कि नदी में गंदगी ना फेंकें। दूषित पानी से कई तरह की बीमारियां होती हैं।
1: सरपाग मुड़ी तिरनोड़े एक बड़ी अरुत

घाट के पोदुगई पर्वत से निकलकर मचलती हुई ताम्रपर्णी करीब 130 किलोमीटर की राह तय कर तिरुनेलवेली क्षेत्र को सस्त श्यामल बनाती हुई टेढ़ा का रूप धारण करती।

फिर वो पहुंचती है बंगाल की खाड़ी के नजदीक तिरुवैकुंटम। तिरुवैकुंटम ये नाम है उस स्थान का जहाँ से ताम्रपर्णी की जलधारा सागर के अनंत अंक में समाहित होने को आकुल होती है और अंत में ताम्रपर्णी अपने को सागर

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: cagada, cagada, mano mayo.
1: Antara chino, cagada.

ಬರುವಾಯ ಅಂತರ ಕೀರು ಕಗನ ಬರುವಾಯ ಅಪನೀ

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि तारकासुर वध के पश्चात भगवान शिव शंकर तथा देवी पार्वती गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने लगे थे। दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बड़े हो चुके थे। महादेव और महादेवी ने उनके विवाह का निर्णय लिया। शर्त रखी गई कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। गणेश जी ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए माता पिता की ही 7 परिक्रमाएं कर डाली। पूछने पर कहा कि वेद शास्त्रों के अनुसार माता पिता ही संतान का संपूर्ण संसार होते हैं, अतः उन्होंने संसार की एक नहीं बल्कि 7 परिक्रमाएं पूर्ण की हैं। गणेश जी का शुभ विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ संपन्न हुआ। उधर दैत्य माता दिति ने पुनः दैत्य साम्राज्य के विस्तार की योजना बनानी आरंभ कर दी। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूद जी, सहस्रों वर्षों से अजेय तारकासुर की मृत्यु के पश्चात भी दिति को बुद्धि नहीं आई, वो फिर दैत्यों के नाश का सोचने लगी।
2: शौनक जी, यही प्रश्न उठता है गुरु की महत्ता का। देवता भी विपत्ति आने पर सदैव त्रिदेव की ही शरण में जाते थे और वे गुरु का धर्म निभाते हुए उनका कल्याण भी करते थे, परंतु दिति ने तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य तक को अपदस्थ कर दिया था। तारकासुर पुत्रों को मार्गदर्शन मिलता तो कहां से।
1: महाभाग सूत जी, तो फिर दिति ने क्या किया।
2: उसने स्त्री सुलभ चाल चली, रोती बिलखती वो दैत्य सेनापति के साथ तारक पुत्रों के पास गई।

0: जो तुम्हारी इस दुखदाई स्थिति के कारण हम ही हैं। हम ही ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रस्ताव न मानकर तुम्हारे पिता को मृत्यु का आलिंगन करवा दिया, असल साम्राज्य का नाश कर डाला।
1: हमारे पिता की मृत्यु के पश्चात आपके इस विलाप का कोई अर्थ नहीं रह जाता दैत्य माता दिति।
0: प्रपौत्र तारकाक्ष, एक ओर हमें दैत्य माता भी कहते हो, दूसरी ओर हम पर यूं कटाक्ष भी करते हो।
1: सत्य को कटाक्ष समझना आपकी भूल है दैत्य माता।
0: हम जानते हैं तारकाक्ष, दैत्य कुल में उत्पन्न होने के उपरांत भी तुम तीनों भ्राता अपनी सत्यवादिता और धर्म परायणता के लिए जग प्रसिद्ध हो। असुर कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी तुम सतो गुण से परिपूर्ण हो, इसीलिए हमारी इच्छा है कि एक नवीन असुर परंपरा की नींव रखी जाए, जिसमें ब्रह्मा द्वारा प्रतिपादित तीनों गुणों का सम्मिश्रण हो।
2: ये आप कह रही हैं दैत्य माता दीदी? आप

0: जिन्होंने तमोगुण की सभी सीमाएं लांघकर दैत्यों का आतंक बढ़ाया, इस सीमा तक कि हमारे पिता को असमय मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा।
1: प्रपौत्र विद्युन्माली, काल कभी असमय नहीं आता और समय न किसी के लिए ठहरता है न किसी के लिए एक समान रहता है।
2: आप कहना क्या चाहती हैं दैत्य माता देती, साफ साफ कहिए।
1: तारकाक्ष, एक माता की क्या अभिलाषा हो सकती है? यही ना कि वो अपने वंश को फलता फूलता देखे, उसकी जय जयकार सुनकर गौरवान्वित हो। परंतु दैत्यों की जय जयकार देवताओं की हार पर निर्भर है। देवताओं ने छल से हमारा अमरत्व का अधिकार तो छीन लिया है, परंतु शासन का अधिकार हमसे नहीं छीन सकते।
2: हम कितना भी प्रयत्न कर लें दैत्य माता, ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनके स्थान से नहीं हटा सकते।
3: युवराज तारकाक्ष, आपका कथन सत्य है, परंतु हम इन्हीं तीन देवताओं के आशीर्वाद से इंद्रादि सभी देवताओं को उनके लोकों से हटा सकते हैं, त्रिलोकी पर पुनः अधिकार कर सकते हैं। यदि हम अस्त्र त्याग कर मात्र शोक मनाते रहे तो देवता सदा के लिए हम पर हावी हो जाएंगे।
1: सेनापति ठीक कह रहे हैं तारकाक्ष, हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
4: तो हमें क्या करना चाहिए दैत्य माता?
1: विद्युन्माली, तुम्हें अपने महान पिता तारक की परंपरा को पुनः स्थापित करना होगा।
4: परंतु पिता श्री की मृत्यु के पश्चात समस्त दैत्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया है।
3: हमें इन पर पुनः विजय प्राप्त करनी होगी। हमारी सेना अन्य दैत्य सेनाओं से अधिक बलशाली है।
1: और प्रपौत्रों, छल बल में तुम तीनों एक समान हो, अपने पिता से किसी तरह कम नहीं हो।
5: परंतु क्या देवता हमें पुनः पनपने देंगे?
1: इसका उपाय शुक्राचार्य तुम्हें बताएंगे।
5: परंतु वे तो हमसे रुष्ट हैं।
1: तुमसे नहीं तारकाक्ष, वे हमसे रुष्ट हैं। और हम स्वयं जाकर उनसे क्षमा मांगेंगे।
4: यदि दैत्य गुरु का मार्गदर्शन हमें मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
1: आओ प्रपौत्रों, आइए सेनापति, सब मिलकर शुक्राचार्य के पास चलते हैं।
6: प्रणाम गुरु शुक्राचार्य।
7: तारक पुत्रों, तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष, आयुष्मान भव।
1: दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस अकिंचन का प्रणाम भी स्वीकार करें।
7: दैत्य गुरु, हम कब से दैत्य गुरु हो गए दैत्य माता दीदी? आपने तो हमें इस पद से हटा दिया है।
1: अपने इस कुकृत्य का फल हम ही नहीं पूरा दैत्य साम्राज्य भोग रहा है। हम दैत्यों के ही नहीं आपके भी अपराधी हैं। अहंकार में गुरु का ही अपमान कर बैठे।
7: बाण कमान से छूटने के पश्चात पुनः तुणीर में नहीं आता है दैत्य माता, आहत तो हम हो चुके हैं।
1: हम जानते हैं दैत्य गुरु, हमने अक्षम्य अपराध किया है, परंतु हमारे अपराध का दंड हमारे इन प्रपौत्रों को न दीजिए।
5: दैत्य गुरु, आप ही इस असुर वंश को लुप्त होने से बचा सकते हैं। बालपन से हम तीनों भ्राता आप ही से शिक्षा दीक्षा पाकर बड़े हुए हैं। असुर न होकर भी आप सदैव हमारे हितैषी रहे हैं।
7: हितैषी तो हम अब भी हैं पुत्र तारकाक्ष। गुरु कभी अपने शिष्य के अहित की कल्पना भी नहीं कर सकता, परंतु गुरु और शिष्य के मध्य अगर किसी का अहंकार और दंभ आ जाए तो गुरु को अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी होती है।
1: हम जानते हैं दैत्य गुरु, आप हमारी ओर इंगित कर रहे हैं, परंतु अब हम प्रण लेते हैं कि आपके मध्य कभी न आएंगे। हमें दैत्य कुल का यश पुनः चाहिए, इसके लिए हम कुछ भी करने को तत्पर हैं।
7: ठीक है दैत्य माता दीदी, हम एक बार और आपका विश्वास किए लेते हैं।
1: दैत्य गुरु, आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी

0: नहीं हिलेगा।
1: हम आश्वस्त हुए। तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष,
2: जी दैत्य गुरु।
1: दैत्य साम्राज्य की पुनः नींव डालना आवश्यक है। जाओ, मेरु पर्वत पर सुर और असुरों के महायशस्वी गुरु ब्रह्मा जी की आराधना करो। वे अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे।
2: जो आज्ञा गुरु शुक्राचार्य।
1: परंतु पुत्रों, इस बार वरदान सोच समझ कर मांगना।
2: ऐसा ही होगा दैत्य गुरु।

0: परमपिता ब्रह्मा को हम तीनों भ्राताओं का प्रणाम।
1: हे तारक पुत्रो, तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपने इस घोर तप का उद्देश्य बताओ।
2: हे विधात, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दें कि हमारा वध कोई न कर पाए।
3: हम देवताओं की भांति स्थिर हो जाएं, जरा रोग हमें छू भी ना पाए।
4: मृत्यु हमारे समीप से नेत्र मूंद कर निकल जाए, हम अजर अमर हो जाएं।
1: महादैत्यो, अमरत्व प्राप्त करने का लोभ हर प्राणी को होता है। वो सर्वप्रथम हमसे यही मांगता है, परंतु ये वरदान हम दे नहीं सकते। यदि सभी अजर अमर हो गए तो हमारी ही बनाई सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए सृष्टि का नियम है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। अतः तारक पुत्रो, कुछ और मांगो।
2: जब मृत्यु अवश्यम भावी है ब्रह्मदेव, तो कोई भी अन्य वर मांगने का क्या उपयोग?
1: तारकाक्ष, बुद्धि के उपयोग से मृत्यु को सहस्रों वर्षों के लिए टाला अवश्य जा सकता है। तुम्हारे पिता का उदाहरण तुम्हारे समक्ष है। उसने ऐसी मृत्यु मांगी जिसे देने में यमराज को भी सहस्रों वर्ष लग गए। देवता हतोत्साहित हो उठे।
3: तो फिर हम कैसी मृत्यु मांगे?
1: विद्युन्माली, तुम तीनों अति बुद्धिमान हो। कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे तुम्हारी रक्षा हो सके और मृत्यु भी तुम्हारा वरण ना कर सके।
2: हे ब्रह्मदेव, हम तीनों ही अति बलशाली हैं, परंतु हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रह सकें। सर्वप्रथम आप हमारे लिए तीन ऐसे नगरों का निर्माण करवाएं जिन्हें देवता भी न भेद पाएं।
1: तथास्तु तारकाक्ष।
3: मेरा नगर वज्र समान कठोर लोहे का बना हो।
1: तथास्तु विद्युन्माली।
4: और मेरा नगर रजत का बना हो।
1: ऐसा ही होगा कमलाक्ष।
2: और ब्रह्मदेव, मैं स्वर्ण नगर का स्वामी बनूं।
1: तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण होगी तारकाक्ष। कुछ और भी इच्छा है?
2: हाँ हाँ सृष्टिकर्ता, ये तीनों नगर एक के ऊपर एक सीध में बने हों और सबकी दृष्टि से ओझल रहे, ताकि कोई हमारे निवास को ढूंढ ही ना पाए।
1: हे बलशाली असुरों, जाओ, तुम्हारे ये नगर त्रिपुर नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा तुम तीनों त्रिपुरासुर कहलाओगे। अब अपनी मृत्यु का उपाय भी मांग लो।
2: 1000 वर्ष पश्चात भगवान शंकर एक अद्भुत सर्वदेवमय रथ पर बैठकर आए, तभी हमारा नगर उन्हें श्री विष्णु को और आपको दिखाई दे पाएगा। फिर वे एक ही अनोखे वाण से हमारे तीनों नगरों का एक साथ भेद

0: चिंतन करें, तभी हमारी मृत्यु संभव हो पाएगी।
1: तथास्तु। समय आने पर स्वयं विश्वकर्मा इस रथ का निर्माण करेंगे। मैं दानव,
2: आज्ञा परम पिता।
1: इन तीनों दैत्य भ्राताओं की इच्छाओं के अनुरूप त्रिपुर की रचना करो।
2: आदेश का पालन होगा विश्व निर्माता।
0: एक बार फिर ब्रह्मा हम दैत्यों को मनोवांछित वरदान दे ही गए।
3: परंतु भ्राता श्रेष्ठ, अमृत तो हमें अब भी प्राप्त नहीं हुआ।
0: हुआ कैसे नहीं है? जब हमारे नगर सबकी दृष्टि से ओझल रहेंगे तो कोई उन्हें भेद कैसे पाएगा।
4: इतने प्रसन्न मत हो तारक पुत्रों, तुम शिव की महिमा से अनभिज्ञ हो। पुत्र तारकाक्ष, उनके लिए क्या संभव है?
5: परंतु दैत्य गुरु, तारकाक्ष ने 1000 वर्ष की अवधि भी तो मांगी है। अपने को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए ये समय पर्याप्त है।
4: आप फिर कूटनीति से भरी बात कर रही हैं दैत्य माता। पूर्व में यही दैत्यों के पतन का कारण बनी थी।
5: क्षमा करें दैत्य गुरु, तो अभी से कोई उपाय कीजिए।
4: है एक उपाय। शिव अति भक्त वत्सल हैं, कभी अपने भक्त का अहित नहीं करते। तारक पुत्रों,
6: आदेश दैत्य गुरु।
4: तुम कुछ भी करो, अत्याचार पाप, परंतु सदा अपने हृदय को शिव भक्ति में लीन रखो। उन्हें सदा पूज्य वंदनीय मानो। वे कभी अपने भक्त का अंत नहीं करेंगे।
0: दैत्य गुरु, परंतु कामदेव को
4: इसीलिए कहता हूं, किसी के विरुद्ध कुछ भी करो, शिव के विरुद्ध कभी कुछ मत करना। शिव आराधना अपना धर्म बना लो, तुम अमर हो जाओगे।
6: जैसी आपकी आज्ञा दैत्य गुरु।
5: शिव आराधना, जिस शिव का मैं नाश चाहती हूँ उसी की आराधना। शुक्राचार्य, समय एक बार फिर आपके साथ है, परंतु देखती हूँ कब तक। मैं भी देवताओं का अस्तित्व मिटाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी, कभी नहीं। भले ही मुझे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े।
7: तो महाभाग सूत जी, कुछ वर्षों की शांति के पश्चात दैत्य साम्राज्य का फिर से विस्तार आरंभ हो ही गया।
8: हाँ शौनक जी, परंतु इस बार एक विशाल परिवर्तन आ गया था। तारक के तीनों पुत्रों ने शुक्राचार्य के आदेश से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति अपना ली थी। पापी पुरुष उनके दर्शन तक न कर सकते थे।
7: दैत्य प्रकृति में ऐसा परिवर्तन सूत जी?
8: समय की यही मांग थी और यही था अमरत्व प्राप्त करने का एकमात्र उपाय। धीरे धीरे तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष ने पुनः त्रिलोकी पर आधिपत्य कर लिया, परंतु बिना किसी को सताए। इस बार उनका बल धर्म था।
7: तो क्या देवताओं ने अपना राज्य पुनः स्थापित करने का प्रयास नहीं किया सूत जी?
8: किया क्यों नहीं शौनक जी, निराश देवता सदा मार्गदर्शन के लिए सृष्टिकर्ता की ही शरण में जाते थे। इस बार भी वे करबद्ध हो परम पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे।
1: देवगणों,

0: जानते हैं इन तीनों महादैत्यों को हम ही ने बढ़ाया, प्रोत्साहित किया है। अतः इनका गुरु होने के कारण हम इनका वध नहीं कर सकते। इनकी मृत्यु मात्र देवाधिदेव के हाथों निश्चित है। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं, तो आपके कष्टों का निवारण संभव है। देवराज इंद्र,
1: आज्ञा ब्रह्मदेव।
0: आप सभी देवताओं के सहित उन कृपा सिंधु की सेवा में जाएं। अपने दुखों का विवरण देते हुए उन्हीं से तारक पुत्रों के नाश का आग्रह करें।
1: परमपिता, आप भी हमारे साथ चलिए ना। महाप्रभो आपका निवेदन कभी नहीं टालते।
0: नहीं इंद्रदेव, इस समय हमारा आपके साथ चलना उपयुक्त न होगा। महादेव का प्रथम प्रश्न हमसे ही होगा कि दैत्यों की प्रकृति जानते हुए भी हमने उन्हें वरदान क्यों दे दिया।
1: क्षमा करें विधात, ना चाहते हुए भी देवता भी आपसे ये प्रश्न कर सकते हैं।
0: हाँ, आपका प्रश्न करना उचित ही होगा देवराज, परंतु हम अपने ही बनाए नियमों से बाध्य हैं। भक्त से प्रसन्न हो उसे मनवांछित वरदान देना हमारा धर्म है, परंतु ये भी स्मरण रहे देवराज कि वरदान का दुरुपयोग भी हमें सह्य नहीं है। भक्त को दंडित करने के उपाय भी हैं हमारे पास।
1: तो विधा, आप तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष को दंडित क्यों नहीं करते?
0: इंद्रदेव, वे धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। वे समरों में विजय प्राप्त कर रहे हैं अपने बल से, ना कि अपने अत्याचारों से। उनकी बंधित प्रजा उनके राज में सुखी है। हम उन्हें दंडित करें तो किस आधार पर? महाप्रभु, आपके इस अकस्मात दर्शन से मैं धन्य हुआ।
2: प्रिय ब्रह्मदेव, हम आपके मन की ये दुविधा ही दूर करने आए हैं। हम आपकी स्थिति अच्छी तरह समझ रहे हैं तथा इन देवताओं को भी यही समझाने आए हैं कि आपके कथन अक्षरतः सत्य हैं।
1: परंतु देवाधिदेव, हमारे कष्टों का निवारण कैसे संभव होगा? हम पुनः राज्य विहीन हो भटक रहे हैं, जबकि पापी दैत्य
2: इंद्र, पाप और पुण्य की परिभाषा सुरों, असुरों तथा मानवों के लिए भिन्न नहीं है। सभी पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, सभी के हाथों पुण्य होता है।
1: महाप्रभु, हम देवता हैं, सदा पाप कर्म से दूर रहते हैं।
2: इंद्र, अपने पाप कर्मों का स्मरण करो।
1: अपने पाप कर्म? महाप्रभु,
2: स्मरण करो अपनी काम वासना, ऋषि गौतम की पत्नी पर आसक्त होकर तुमने छल किया, गौतम का रूप धारण कर उसके साथ शयन किया। इंद्र, हम शिव हैं, हम किसी में भेद नहीं रखते। जब हम स्वयं अपनी पत्नी सती के अविश्वास के कारण उसका मानसिक त्याग कर सकते हैं, कामदेव को अपनी तपस्या में बाधा डालने के लिए भस्म कर सकते हैं, तो इंद्रदेव, हम आपके इस कुकर्म के लिए आपको दंडित क्यों नहीं कर सकते?
0: पुत्र इंद्र, यही देवाधिदेव का न्याय है। सतो गुण के स्वामी होकर भी जो मार्ग से विचलित होता है वो महाप्रभु के दंड का भागी होता है।
2: और पुत्र इंद्र, तारक पुत्र इस समय महान पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं। नियम यही कहता है कि पुण्य आत्माओं पर विद्वानों को प्रहार नहीं करना चाहिए। देवताओं के समस्त कष्ट हमें ज्ञात हैं, फिर भी धर्माचरण के कारण वे दैत्य

0: अवध्य हैं।
1: महादेव, अर्थात दैत्यों का विनाश संभव नहीं?
0: मैं संघारक हूँ, फिर भी मैं मित्र द्रोह नहीं कर सकता। दैत्य मेरी भक्ति कर मेरे मित्र बने हुए हैं। स्वयं ब्रह्मा जी के शब्दों में, तुम सब कर्म के मर्मज्ञ हो, अतः तुम ही बताओ, जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ?
1: अर्थात देवाधिदेव, आप भी हमारी समस्या का निवारण करने में असमर्थ हैं?
0: इंद्र, ब्रह्मा जी, विष्णु हरे और हम महेश, असमर्थ तो हो ही नहीं सकते। हम आपको उपाय बताते हैं। आप क्षीर सागर वासी विष्णु के पास जाएं, वे और नारद मुनि अवश्य ही आपके कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताएंगे। जाओ, उन्हीं के पास जाकर निवेदन करो।
1: जो आज्ञा देवाधिदेव। और महाज्ञानी शौनक जी, देवाधिदेव ने देवताओं को कष्ट निवारण का उपाय बता ही दिया।
2: आश्चर्य की बात है महाभाग, पहली बार ऐसा हुआ जब प्रभु शिव शंकर ने स्वयं कुछ उपाय ना कर देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया।
1: विप्रवर शौनक जी, कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी व्यक्ति के पास समस्या निवारण का उपाय ही ना हो। ऐसे में बुद्धिमान व्यक्ति दुखी व्यक्ति को उलझाए बिना निवारणकर्ता के पास भेज देता है।
2: महाभाग सूत जी, इसका मतलब ये हुआ कि देवाधिदेव जानते थे कि देवताओं की समस्या का हल विष्णु हरे के पास है। सूत जी, श्री विष्णु ने देवताओं को क्या उपाय सुझाया?
1: श्री विष्णु हरे ने जो उपाय समझाया उसकी चर्चा हम अगली भेंट में करेंगे।
3: श्रोताओं, शिव महिमा का ये प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के पहले अध्याय से लेकर पांचवें अध्याय तक से लिया गया था।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचा कर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसाकर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में काज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

ललिता सहस्रनामना किंवा सरसनाम शे। श्रीमाता श्री महाराग्नी श्रीमत सिंहासनेश्वरी श्री

एक श्री माता ललिता जी, ऐश्वरी नामा हराग्नि, शोभायुक्त ए सिंहासन ऊपर विराजेला सिंहना, अग्नि कुंडरूपी ज्ञान माथी उत्पन्न प्रगट थयेला, देवोना कार्य माटे तत्पर, साथे चरणमाना नखरूपी चंद्रना किरणों वड़े जनमानसना तमोगुण ने हरी लेनारा, बन्ने चरणनी कांति प्रभाथी कमलोनी शोभाने झांकी करनारा ए ललिता देवी ने अमारा प्रणाम।

ये दुर्गा माता, सती साध्वी, भगवान शिव पर अपार प्रीति रखनारा, भवानी संसारना बंधन माथी मुक्त करनारा, आर्या दुर्गा जय अपावनारा, आद्या त्रिनेत्रा त्रिशूल धारिणी दुर्गा देवी ने अमे प्रणाम करिए।

ಭವಭಂಜನ ಭವಭಂಜನ ಗುಣ ಭವಭಂಜನ ಗುಣ ಅಪಮನ ಅಪನ ರಾಮ ಅಪನೇ

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है लुटेरे जो दिन रात हम सबको लूटा करते हैं और हम इन सबको प्रसन्न रखते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, ये हमको लूटते रहते हैं। तो इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे।

पंक्तियां हैं और हमारे आपके जीवन में सबके जीवन में बचपन से लेके बढ़ापे तक जो होता है जो गुजरता है वो इन चार पंक्तियों में उतार दिया गया है।

पीयूष पवार जी संगत कर रहे हैं। अब इनका विशेष कमाल देखिए, मैं जो सरगम गाऊंगा ये आपको संतूर पे बजा के सुनाएंगे, और जरा ध्यान से सुनिएगा ठीक बजाते हैं कि नहीं बजाते। इनको मैं एक ही शर्त पर बंबई से यहां तक लेके आया हूं कि ठीक नहीं बजाएंगे तो यहां छोड़ के चला जाऊंगा, तो जरा ध्यान से सुने।

बंबई वापस ले जा रहा हूं। इनका एक लड़का है 6 साल का, वो भी बहुत अच्छा संतूर बजाता है और अपने स्कूल में, स्कूल के फंक्शंस में संतूर बजा के सुनाता है तो सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार उसके टीचर ने पूछा, बेटा बहुत अच्छा संतूर बजाते हो, तुम्हारे घर में और भी कोई संतूर बजाता है? तो उसने कहा, हाँ और लोग अभी सीख रहे हैं। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम लोग कितने भाई बहन हो? तो उसने कहा, हम लोग 14 भाई बहन, 8 भाई हैं, 6 बहनें। तो टीचर ने कहा, सच में? कहता, हाँ जी सच में। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? उसने कहा, वह यही काम करते हैं। क्योंकि टाइम मिलेगा तो और कुछ करेंगे।

सुनना बड़े पुण्य का काम है आप लोग कर रहे हैं, और भगवान का भजन गाना उससे ज्यादा पुण्य का काम है। तो कितना अच्छा हो आप भी गाइए, हम भी गाएं, सब मिलकर ये पुण्य कमाएं। तैयार हो जाइए, पहले मैं गाऊंगा आप सुनिए, फिर आप गाइए मैं सुनूंगा।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए,